मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आश्चर्य संवाद 1947 भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि तदनुसार सन 2026 सितंबर महीने की दिनांक 26 और दिन है शनिवार। श्रोताओं, अब से लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि के 9:16 तक प्रसारित की जाने वाले सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे प्रसारण निष्पादक श्री संगे बोम्पा शिरथेगपा, कंट्रोल रूम में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री न्यूटन बोरा और श्री तानिंग तको, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अशुद बर्मन और श्री हेमंत स्वर्गरे, मुनपा में उद्घोषक श्री लुपसंग नोरबू तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका कारमू। हम सभी आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओ, हमारे केंद्र से आज के तमाम कार्यक्रम आरंभ होती है। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले आप सुनिए, अब से ही थोड़ी देर बाद यानी दोपहर के ठीक 2 बजे मीटिया न्यूज तथा 2:15 पर दोपहर समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: Day, Mr. Shah will inaugurate women empowerment initiatives in the cooperative sector at Kundara. Later, he will attend the Amrita Kirti Puraskar ceremony at Amritapuri. Minister of State for Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, launched 5 new popular science magazines in Tamil, Telugu, Marathi, Bengali and Assamese on the occasion of the 85th Foundation Day at the Council of Scientific and Industrial Research or CSIR. The magazines were published by the CSIR National Institute of Science Communication and Policy Research. The ministry said that the release of the magazines marked an important expansion of CSIR, National Institute of Science Communication and Policy Research's popular science publishing portfolio. India has made a strong medal haul at the Aichi Nagoya Asian Games today, adding 4 medals across kabaddi, athletics, shooting and squash. The latest results have taken India's overall medal tally to 27. A report.
1: The Indian women's kabaddi team clinched the gold medal, defeating Iran 37-34 in a closely contested final. Captain Pushpa Rana led India to victory. In athletics, Sawan Barwal bagged silver in the men's marathon, ending India's 44-year wait for a podium finish in the discipline, clocking 2 hours, 11 minutes and 37 seconds. His performance marked a personal best and a new national record. In shooting, Tilotama Sen, Vidarsa K. Vinod and Ashi Chokse secured silver in the women's 50-meter rifle 3-position team event, scoring 1,763 points. In mixed double squash, Joshna Chinnappa and Vilvan Senthil Kumar won bronze. With these 4 medals, India are currently placed 12th in the medal standings and its overall tally has reached 27 with 3 gold, 11 silver and 13 bronze. Komadi Parekh, Akashwani News, Delhi.
0: And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls to leverage AI-created opportunities while addressing associated risks. Co-chairs event on AI in the context of international peace and security in New York. Mr. Jaishankar to address 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. Foreign Secretary Vikram Misri calls for urgent UNSC reform to give developing nations greater voice. Continuous rain in Odisha, Chhattisgarh, Bihar and Uttar Pradesh disrupts normal life. Heavy rainfall alert for today over parts of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Iran proposes deal to reopen Strait of Hormuz in 7 days if US meets its conditions. US rejects the proposal. Indian women's kabaddi team clinches gold, beating Iran at Asian Games, wins 2 silver medals in women's shooting and men's marathon. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। ईरान ने अमेरिका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडबरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया। अमेरिका ने प्रस्ताव खारिज किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गिरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की

0: भी महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
2: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहां पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों में नशे की लत को केवल जनस्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि बाल संरक्षण के विषय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वे आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान

0: संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जो राज्य का 74% हिस्सा है। 32 जिलों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
1: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केंदुझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले चार दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
3: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
5: माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
3: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसमें 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में

0: ऊपरी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए, अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुमकल और आशी चौकसी को बधाई दी है। स्क्वाश में अनाहत सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार। मीडियम में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। निजी श्रोताओं, अब पेश है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। भक्ति गीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए गायक मनहार उदास के स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत। निजी सुनिए कार्यक्रम वंदना।
2: लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य, संपत्ति तथा संपत्ति प्राप्ति के लिए श्री सूक्त का सस्वर पाठ तथा श्री सूक्त की ऋचाओं से घृत होम करने का विधान वेद आदि शास्त्रों में वर्णित है। विशेष रूप से आधुनिक युग में वेदादि मर्यादा से हीन मनुष्य श्रीहीन, कांतिहीन और चिंतित तथा अशांत दिखाई देते हैं। उनके कल्याण के लिए श्री सूक्त पूर्वक होम विधान अत्यंत लाभकारी है। प्रातःकाल खिले कमल में गुणों का आश्रय लेने वाली लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती है। प्रातः प्रबुद्ध कमलम आश्रयेत श्री गुणाश्रया। जो व्यक्ति सूर्योदय के समय स्नानादि से निवृत्त होकर श्री सूत का सस्वर पाठ सहित होम करता है, उसके पास संपूर्ण वैभव ऐश्वर्य से युक्त लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। यही श्रीदेवी मनुष्यों को चिंता और शोक भरे भवसागर से पार उतार देती है। तरति शोकम आत्मविद। श्री सूक्त उपासना से मनुष्य सांसारिक वैभव तो प्राप्त करता ही है, उसको आध्यात्मिक संपत्ति भी प्राप्त हो जाती है। वह आत्मविद आत्म तत्व को सहज ही जान लेता है। जो व्यक्ति 21 बार श्री सूक्त के 16 मंत्रों से श्री होम करता है, वह सांसारिक ऐश्वर्यों के साथ साथ अष्ट सिद्धि और नव निधियों को सहज ही प्राप्त कर लेता है। इस मंत्र को सस्वर पढ़ने सुनने मात्र से ही व्यक्ति को आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों प्रकार की शांति प्राप्त होती है। जो मंत्र पाठ नहीं कर सकते, वे मंत्र सुनकर स्वाहा कहते हुए हवन करें। मंगलवार से हवन पूर्वक श्री सूक्त का जप अत्यंत लाभकारी होता है। 72 दिनों में 1,25,000 विधि पूर्वक जाप करने से श्री सूक्त सिद्ध होता है। सिद्ध होकर ही मंत्र व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेता है। ओम शांति शांति।

0: श्रोताओं, इस वक्त आप चंद भक्ति गीतों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनिए यह अगला भक्ति गीत।
1: लक्ष्मी गायत्री गायत्री मंत्र के समान ही महामंत्र है। गायत्री परात्पर ब्रह्म के ध्यान से सिद्ध होती है। उससे सांसारिक विभूतियों के कारक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है, किंतु लक्ष्मी तो प्रकृत सृष्टि का साक्षात स्वरूप है। यदि संसार के ऐश्वर्य धन धान्य के अभावों के कष्टों से संघर्ष करता व्यक्ति लक्ष्मी गायत्री का जाप करता है तो वो अभावों के समुद्र को बिना प्रयास ही पार कर जाता है। लक्ष्मी गायत्री से व्यक्ति जीवन की सुविधाओं को भोग कर प्रभु की कृपा से सुखद शांति प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। श्री सूक्त को होम पूर्वक पूर्ण करके लक्ष्मी गायत्री के जप की 11 मालाएं फेरने से मनुष्य के दुख दारिद्र्य और अभाव का विनाश होता है और परम शांति।

ओम प्रभु शांति एक महात्मा का अनुभूत मंत्र है। इसका जाप करने से अशांति दूर होती है और विभिन्न क्षेत्रों में अनायास ही शांति प्राप्त हो जाती है। इस मंत्र से हवन करके जाप करने से तत्काल मनोवांछित फल प्राप्त होता है। यदि 5 मिनट भी कोई ओम प्रभु शांति मंत्र का जप कर लेता है तो उसके 23 घंटे 55 मिनट प्रभु स्वयं संभाल लेते हैं। ओम शांति शांति।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गायक मनहार उदास के स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के ठीक 3 बज चुके हैं। निजी श्रोताओं, अब प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। विभिन्न प्रांत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए चंद ईदो मिश्मी आधुनिक गीत। इसके गायक कलाकार है संगम लिंगी और ओतोगी म्योली। लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप चंद ईदो मिश्मी आधुनिक गीतों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत।

0: श्रोताओ, इसी ईद ओ मिशमी आधुनिक गीतों के साथ ही विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम एफ 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनिए दोर्जी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग की छात्र मिस लोबसंग यांकी से छात्र के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता विषय पर चंद शब्द।
1: आकाशवाणी तवांग के कार्यक्रम मेरी बात सुन रहे आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। मेरा नाम लोबसंग यांकी है और मैं दोर्जी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग में 5वें सत्र की छात्रा हूँ। आज मैं एक प्रासंगिक विषय छात्रों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगी। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और हम इस पर हर पल कुछ न कुछ करते रहते हैं, चाहे पढ़ाई हो, खेलना हो, सोशल मीडिया हो या वीडियोस देखना। लेकिन इस सुविधा के साथ ही कुछ खतरे भी जुड़े हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हर लिंक, हर मैसेज, हर फाइल या हर फ्रेंड रिक्वेस्ट सुरक्षित नहीं होती और कभी कभी हम सोच भी नहीं सकती कि एक छोटी सी गलती कितना बड़ा नुकसान ला सकती है। हैकर्स, वायरसेस, फिशिंग और फेक प्रोफाइल्स हमेशा छुपे होते हैं और एक पल की लापरवाही से हमारा व्यक्तिगत डेटा, हमारे पासवर्ड्स और तस्वीरें सब खतरे में आ सकती हैं। इसीलिए सबसे पहले अपनी व्यक्तिगत जानकारी हमेशा सुरक्षित रखो और अनजान व्यक्तियों के साथ कभी शेयर मत करो। मजबूत पासवर्ड्स का इस्तेमाल करो और OTP या वेरिफिकेशन कोड्स कभी किसी के साथ शेयर मत करो, चाहे वो व्यक्ति कितना ही भरोसेमंद क्यों ना हो। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले हमेशा सोचो, क्योंकि जो चीज मजाक लगती है या अहानिकारक लगती है वो कभी कभी गलत समझ या परेशानी बना सकती है। और हमेशा याद रखो कि ऑनलाइन भरोसा समझदारी से करने ही सुरक्षा का पहला कदम है। अगर कोई अनजान व्यक्ति संपर्क करता है या कुछ भी संदिग्ध दिखे, तुरंत किसी विश्वसनीय व्यक्ति को बताओ और कभी भी अनजान लोगों से दोस्ती मत करो। साइबर बुलिंग को हल्के में मत लो, क्योंकि ऑनलाइन अपमान, ट्रोलिंग या

0: हिंसा भी उतनी ही सच्चा और हानिकारक हो सकती है जितनी सामने से होती है। और अगर तुम्हें या किसी और को परेशानी हो रही हो, चुप मत रहो, सबूत संभाल कर रखो, व्यक्ति को ब्लॉक करो और भरोसेमंद वायर्स से मदद लो। हमेशा सतर्क रहो, संदिग्ध लिंक्स और पायरेटेड डाउनलोड से दूर रहो और समझदारी से इंटरनेट का उपयोग करो, क्योंकि एक छोटी सी गलती ही तुम्हारे डिवाइस और व्यक्तिगत जानकारी को खतरे में डाल सकती है। इंटरनेट एक शक्तिशाली औजार है और इसका सही और सुरक्षित इस्तेमाल ही हमेशा हमें और दूसरों को सुरक्षा दे सकता है। अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखो, हमेशा सोचो, हमेशा सतर्क रहो और हमेशा समझदार रहो, ताकि हम डिजिटल दुनिया का लाभ ले सके बिना किसी खतरे के। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दुर्जी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज तवंग की पांचवी सत्र की छात्र मिस लुपसंग यांकी से छात्र के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता विषय पर चंद शब्द सुन रहे थे। इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:33 हुए है। लीजिए श्रोताओं, हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है फिल्म जब तक है जान से, नीति मोहन के आवाज में। ए आर रहमान द्वारा संगीत पद पर इस गीत को लिखा है गुलजार ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है अमित त्रिवेदी और नकाश अजीज और ऐश किंग के स्वरों में फिल्म आयशा से। गीत जावेद अख्तर के है व संगीत अमित त्रिवेदी का।

श्रोताओं, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम नारी संगीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत फिल्म मेरे ब्रदर्स की दुल्हन से नेहा बरसीन की आवाज में। इस गीत के गीतकार है इर्शिद कमिल तथा संगीतकार सोहेल सिंह।

0: श्रोताओं, फिल्म मेरी ब्रदर्स की दुल्हन की इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नारी संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनेगा इस संदेश के बाद।
1: रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
2: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
1: RBI कहता है, जानकार बनिए,
2: सतर्क रहिए।
0: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। निजी श्रोतव, हम आपकी किस्मत पर लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। श्रोतव, कार्यक्रम का पहला नगमा आइए सुनते हैं फिल्म हीरो पंती से, गायक मोहित चौहान के स्वर में। कोसार मुनीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है साजिद वाजिद ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनिए, गायक आर्गो की स्वर में फिल्म कपूर एंड सन्स से। इस गीत के गीतकार हैं मनोज मुंतासिर तथा संगीतकार आर्गो।

श्रोताओं, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत, मनोज मुंतासिर द्वारा शब्द रचना पर फिल्म सनम रे से, अरिजीत सिंह और अमाल मालिक के आवाजों में, और इस गीत को संगीत से सजाया है अमाल मालिक ने।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है फिल्म हॉलीडे से, गायक अरिजीत सिंह के स्वर में। इरशाद कमल के रचे इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म रईस से। अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत दिया है कौशिक ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया फिल्म हीरो से यह गीत मोहित चौहान और प्रिया पंचल की आवाजों में। निरंजन आयंगर के लिखे इस गीत को संगीत दिया था सचिन जिगर ने। श्रोताओं, कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत फिल्म एक पहली लीला से, गायक उजैर जसवाल की आवाज में। कुमार द्वारा शब्द रचना पर इस गीत को संगीत से संवारा है उजैर जसवाल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत पेश है श्यान और श्रिया घोषाल की आवाजों में फिल्म वांटेड से। अरुण भरद्वाज द्वारा कलमबद्ध पर इस गीत को संगीत से सवारा है साजिद वाजिद ने।

श्रोताओं, फिल्म वांटेड के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए पंडित उल्लास बपत से संतूर वादन तथा तबला पर संगत दे रहे हैं पंडित वैभव नागेशकर ने। लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

पंडित उल्लास बापत से संतूर वादन तथा तबला पर संगत दे रहे थे पंडित वैभव नागेशकर ने। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओ, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनिएगा अब से ही थोड़ी देर बाद यानी शाम के 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पारनायक ने संगीत को एक सार्वभौमिक भाषा कहा जो सीमाओं से परे जाकर लोगों के दिलों को जोड़ता है और सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करता है। ईटानगर स्थित दीरानाथुंग गवर्नमेंट कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा कॉलेज के जुबली हॉल में हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह का आयोजन। महिला एवं बाल विकास विभाग ईस्ट सियांग द्वारा पासीघाट राष्ट्र पोषण माह 2026 के तहत आंगन का उत्सव में भव्य उद्घाटन का आयोजन। कृषि विज्ञान केंद्र नामसाई में आयोजित का एक कार्यक्रम में AICRP ऑन पोल्ट्री योजना के तहत कुल 1200 कलिंगा ब्राउन नस्ल के पोल्ट्री चूजों के साथ स्टार्टर फिट के 38 बैग 50 किसानों को वितरित किए गए। ईरान ने अमेरिका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने का प्रस्ताव दिया। अमेरिका ने प्रस्ताव खारिज किया। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय के रूप में समुद्र सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए की सामने रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पारनायक ने जीरो में आयोजित जीरो म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेते हुए संगीत को एक सार्वभौमिक भाषा कहा जो सीमाओं से परे जाकर लोगों के दिलों को जोड़ता है और सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक जैसे आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा और अभिव्यक्ति को सामने रखने, आत्मविश्वास विकसित करने तथा उनकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए एक रचनात्मक मंच प्रदान करते हैं। राज्यपाल ने कहा है कि यह महोत्सव आज भारत के सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्र संगीत समारोहों में से एक बन चुका है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि उदाहरण देते हुए कि किस तरह संस्कृत, रचनात्मकता और सामुदायिक भागीदारी एक साथ मिलकर युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है। स्थानीय युवाओं और संगीतकारों के साथ बातचीत के दौरान राज्यपाल ने उन्हें समर्पण और अनुशासन के साथ उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। ईटानगर स्थित दीरानाथुंग गवर्नमेंट कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा कॉलेज के जुबली हॉल में हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. तुम्बम रुबा चोमोलिली ने राष्ट्र की एकता में हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हिंदी विभिन्न भाषाएं और संस्कृति, राष्ट्रभूमि

0: वाले लोगों के आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही उन्होंने अपनी मातृभाषा और स्थानीय बोलियों के संरक्षण में महत्व पर भी जोर दिया है। उन्होंने सभी से अपनी मातृभाषा और स्थानीय बोलियों को सीखने, बोलने, सम्मान देने और संरक्षित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि मातृभाषा और स्थानीय बोलियां व्यक्ति की पहचान, संस्कृति और जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने लोगों को हिंदी के साथ साथ अपनी भाषाई विरासत के प्रति भी सम्मान और गर्व के साथ भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। महिला एवं बाल विकास विभाग ईस्ट सियांग द्वारा पासीघाट में राष्ट्र पोषण माह 2026 के तहत आंगन का उत्सव के भव्य उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया। इसके साथ ही मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के अंतर्गत हितधारक समन्वय बैठक की आयोजित की गई है। कार्यक्रम में उपायुक्त सहित स्थानीय प्रशासन के विभिन्न अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उपनिदेशक ICDS सह जिला बाल संरक्षण अधिकारी MT पादुंग ने आंगन का उत्सव के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जिले में मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के तहत कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमियों को दूर करने के महत्व पर भी आवश्यकता पर भी बल दिया है। विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर संरचना और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने प्रमुख हितधारकों को शामिल करते हुए समर्पित बहुविभागीय व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का प्रस्ताव भी रखा। इस अवसर पर उपायुक्त सोनालिका जीवानी ने सभी प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की सराहना की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि विभागों के बीच सहयोगात्मक कार्रवाई जमीनी स्तर की चुनौतियों के समाधान और बच्चों के हित में प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि विज्ञान केंद्र नामसाई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान AICRP ऑन पोल्ट्री योजना के तहत कुल 1200 कलिंग ब्राउन नस्ल के पोल्ट्री चूजों के साथ स्टार्टर फीट के 38 पैक 50 किसानों को वितरित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को खेत पर सस्ते और उन्नत मुर्गी पालन पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से मुर्गी पालन को बढ़ावा देने और बेहतर पोल्ट्री उत्पादन के माध्यम से किसानों के आजीविका के अवसर को भी बढ़ाने का कार्यक्रम का उद्देश्य रहा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थी।
1: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें 7 दिन के भीतर हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाएगा। अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगने प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का सह तीसरा स्वर्ण पदक रहा है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बराबर रखने के लिए बधाई दी है। जापान में विश्व SY खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है।

मीडियम एफ 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम जरोखा से पहले सुनिए एक जरूरी सूचना। मोन्युल ग्यावा जम्पा मोनलम तोंगची छिन्मो तवांग की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से प्राप्त सूचना अनुसार जम्बा लगंग जमसेलिंग द्वारा द्वितीय मोन्युल ग्यावा जम्बा मोनलम तोंगची छिन्मो का आयोजन 5 अक्टूबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 तक किया जा रहा है। इस पवित्र प्रार्थना सभा का आयोजन विश्व शांति, करुणा, प्रज्ञा और धर्म की समृद्धि के लिए किया जा रहा है। इस अवसर पर भिक्षुओं, भिक्षुनियों, छोस्पा लामाओं तथा आम श्रद्धालुओं को इस धार्मिक आयोजन में सदर आमंत्रित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत मोनलम प्रार्थना, धर्म प्रवचन एवं शिक्षाई सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिनांक 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाले मोनलम प्रार्थना एवं संबंधित धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संबंध में कार्यक्रम की समय इस प्रकार है। 5 अक्टूबर 2026 को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मोनलम प्रार्थना, सुबह के 10:15 से 11 बजे तक धर्मा डिबेट एवं सुनछे शिक्षाएं, सुबह के 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक पुनः मोनलम प्रार्थना, दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक भोजन तथा दोपहर के 1:30 से 3 बजे तक मोनलम प्रार्थना होगी। 6 अक्टूबर 2026 से 9 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित समय अनुसार मोनलम प्रार्थना एवं संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 10 अक्टूबर 2026 को सुबह के 9 बजे से 10 बजे तक जम्बा छस्कर, 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा 12 बजे से 1 बजे तक भोजन का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 1 बजे से परम पूज्य 12वें गुरु टुल्कु रिम्पोछे द्वारा सेवंग यानी दीर्घ आयु आशीर्वाद प्रदान किया जाएगा। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर प्रार्थना में भाग लें। सूचना समाप्त हुआ। लीजिए श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित की जाने वाले आज के शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित की जाने वाले कार्यक्रमों से। तो आइए पहले हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित की जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों से। अब से ही थोड़ी देर बाद यानी संध्या के 6:20 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम जेदुन लेरिम के अंतर्गत तवंग मठ के गेलोंग जम्बा जिम्पा और साथियों से नेतन छक्षे का शेष भाग 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार तत्पश्चात 7:05

मिनट पर अंग्रेजी में समाचार। शाम के 7:10 पर सुनिएगा स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए खंडो डोवाजांगमो जिला अस्पताल तवंग के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर तेंजिन कोंगा से एक अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर भेंटवार्ता। शाम के 7:30 पर कार्यक्रम साजो आवाज। इसमें कल आप सुनेंगे फिल्म चौदहवीं का चांद से मोहम्मद रफी और फिल्म चोरी चोरी से लता मंगेशकर और मन्ना डे के आवाजों में चनकीत। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज शाम के 7:45 पर। शाम के 55 पर आने लीजिएगा फिल्म 10 से शंकर महादेवन, उदित नारायण और साथियों के स्वरों में एक देशभक्ति गीत। आज रात 8 का वक्त रहेगा आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पसंद किए गए चंद सदाबहार पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। 8:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित अरुणाचल न्यूज रील। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित स्पोर्ट्स कैन 8:30 पर। 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के 9:00 सुनिए न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। श्रोताओं, कल हमारी सभा आरंभ होंगे सुबह के 10:37 पर। सुबह के 10:45 पर आप सुनिएगा भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसमें कल आप सुन पाएंगे गायक अनूप जलोता से चंद हिंदी भक्ति गीत। कल सुबह के 11:00 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम मन की बात का 138वां संस्करण के अंतर्गत भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से अपने मन की बात साझा करेंगे। इसके तुरंत बाद श्री लोबसंग तोप्तेन द्वारा इसका मोनपा संस्करण प्रस्तुत किया जाएगा। कल दोपहर का सभा आरंभ होंगे दोपहर 2:00 मिट्टी न्यूज के साथ तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। 2:30 पर भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। 3:00 विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। दोपहर के 3:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम मेरी बात। कल दोपहर के 3:33 का वक्त रहेगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत। कल शाम के 6:00 लेरिम सेरा। शाम के 6:20 का वक्त रहेगा तवंग मठ के पूर्वलोपन लामा केसंग से ने बंगजंग तीर्थ स्थल पर वार्ता। कल शाम के 7:10 पर आप सुनिएगा कवाली गीतों का कार्यक्रम महफिले कवाली। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:45 पर तथा शाम के 7:50 पर रीजनल न्यूज। कल रात के 8:00 सुनेगा कार्यक्रम मन की बात का 138वां संस्करण का मनपानुवाद श्री लोबसंग तोप्तेन से। पर स्पोर्ट्स कैन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि के 9:00 सुनिए न्यूज एट 9। 9:16 पर कल के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से
कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी इसी जानकारी के साथ ही

0: 생기는 스타다 신들리리마 따왕 권박 길롱 잠버지미시 크리스도노 니든 착주 초가 닷나 선매 정말 무디에서 나오물 생기는 다우 슈지 따왕 권박 로본스르바 길롱 잠비왕주시 크리스도노 젠데지 숭아 장사사오 선나사
1: Gelong Jambu Jimisi, Christono, Nathan Chacho, Choga, Tadna, Senme Chakmar, Mutia, San Nahunin, Ejikshuji, Tawang Konbak, Lobun Surba, Gelong Jambu Mojusi, Christono, Chendezek, Sunga, Tangsar, Sanong, San Nomber, Langin out the Balunting, Tawang Tishno, Duke Monbak, Lerimbana, Chazang Dudur, Langi, Samba, Nodu Suzu, Nisondur, Langin out of Shuji, Na, Hindiga, Sigin, Shuji, Injiga Sigur, Luntingang, Deligus, San Nansa,
2: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सरकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
3: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश

0: के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के मंत्री एम लीजू, पीसी विष्णुनाथ, सांसद एनके प्रेमचंद्रन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO के बाद इन दस्तावेजों को इसीनेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्तियों को मतदाता पंजीकरण अधिकारी सुनवाई के लिए नहीं बुलाएंगे। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनिसंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान ATM से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेनदेन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग लेंगे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुर्नूल को विमानन और ड्रोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि उनका ध्यान केवल हवाई अड्डों पर नहीं बल्कि पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव, जमीनी संचालन और हवाई अड्डा प्रबंधन को शामिल करते हुए संपूर्ण विमानन इकोसिस्टम के निर्माण पर है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तरजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। उधर तिलोत्तम्मा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। स्क्वॉश में जोशना चिनप्पा और लावन संथल कुमार की मिक्स डबल्स जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Election Commission today said that booth-level officers or BLOs will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing Special Intensive Revision or SIR to collect the required documents. The BLOs will subsequently upload the documents on the ECI Net platform. The decision was taken during a meeting held by the Election Commission in New Delhi. The Commission clarified that such persons will not be called for hearing by the Electoral Registration Officer. It said that hearings will be conducted only in exceptional circumstances, preferably through online mode. The Commission also said that if a hearing is required, the elector may authorize any adult member of their family to appear on their behalf. SIR has already

0: नमस्ते चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे एक ऐसे नेक कार्य की जिसमें दिया गया आपका थोड़ा सा समय किसी के जीवन की डोर को थाम सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वैच्छिक रक्तदान की। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 2026 के अवसर पर देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आगामी 1 अक्टूबर 2026 को खंडोडोवा संगमो जिला अस्पताल तवांग में स्टेट लेवल सेलिब्रेशन आयोजित किया जा रहा है। तो आइए आज इस कार्यक्रम में हम जानते हैं रक्तदान का महत्व, इससे जुड़ी भ्रांतियाँ, इसकी प्रक्रिया, वो भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, और इस जीवनदायी अभियान का हिस्सा हम कैसे बन सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में आमंत्रित किया है खंडोडोवा संगमो जिला अस्पताल तवांग के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर तेंजिन कुंगा जी को। डॉक्टर साहब, आपका हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
1: थैंक यू, सभी को मेरी ओर से नमस्कार।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस जो है क्यों मनाया जाता है और इसके कारण और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है।
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार फिर से। जैसे आपने पूछा राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 2026, इस बार जो स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है वो तवांग में इसका आयोजन कर रहे हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि रक्तदान के बारे में लोगों में जागरूकता लाना
0: जी।
1: और जो रक्तदान का जो फ्रीक्वेंसी है, जो नीड है, उसको लोगों को समझाना और रक्तदान में लोगों का बढ़ चढ़ के योगदान लेना, तो ये बेसिक जो उद्देश्य है वो यही
0: जी,
1: है।
0: जी, जी, जी। और इस बार जो है वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स संदेश दिया गया है
1: जी।
0: तो
1: इस बार का
0: इस संदेश का महत्व हम जानना चाहेंगे सर।
1: रक्तदान जो है वो रक्त एक ऐसा चीज है जो फैक्ट्रीज में बनाया नहीं जा सकता।
0: बिल्कुल।
1: और रक्त का आवश्यकता आज का जो सिनेरियो है, आज का जो हालात है, उसमें रक्त का आवश्यकता कभी भी किसी को भी हो सकता है। और जब रक्त किसी को जरूरत पड़ता है तो उसका एक ही तरीका है, वो कोई और उसको डोनेट करे।
0: जी, जी, जी, जी।
1: तो इसीलिए ये थीम रखा गया है।
0: हाँ जी।
1: One drop of humanity, cue blood save lives।
0: जी।
1: तो जो रक्त जो है उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव है नहीं।
0: जी।
1: तो ब्लड हैज टू बी डोनेटेड टू बी अवेलेबल।
0: जी, जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि जैसे नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे 2026 का स्टेट लेवल सेलिब्रेशन जो है हमारे खंडोडोवा संगमो जिला अस्पताल तवांग में अब की बार करने जा रहे हैं, तो आपके साथ और जैसे कि सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं या कोई और कौन जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में।
1: इस कार्यक्रम में तवांग का जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ साथ इंडियन आर्मी, SSB, ITBP, बाकी प्रोमिनेंट NGOs जो ये रक्त और रक्तदान के विषय में जुड़े हैं, वो सब हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ जो स्कूल के छात्र हैं, कॉलेज के छात्र हैं, NCC कैडेट्स, उन सबको हमने इनवाइट किया है।
0: जी, उस दिन को रक्तदान बेशक होंगे, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं।
1: उस दिन हम जो नेशनल ब्लड डोनेशन डे का जो प्लेज है वो लेंगे और अवेयरनेस कैंपेन्स होगा। उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप एक हम वहां पे लगाएंगे।
0: जी, तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम अब रक्त का जो महत्व है इसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। जैसे शरीर का महत्व हिस्सा है रक्त, आपने कहा, तो किन परिस्थितियों में एक मरीज को रक्त की तत्काल आवश्यकता पड़ सकती है, इस बारे में बताइए।
1: ब्लड आज का जो हेल्थ केयर का सिनेरियो है उसमें ब्लड का रिक्वायरमेंट कभी भी पड़ सकता है। सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट पड़ता है वो बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, किसी को सर्जरी, किसी का सर्जरी होना है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो ट्रॉमा एक्सीडेंट इमरजेंसीज में कभी भी जरूरत पड़ सकता है। किसी का इमरजेंसी सर्जरी होना है उसमें जरूरत पड़ सकता है। और हमारा हॉस्पिटल में खास करके जो ऑब्स्टेट्रिक्स जो प्रसूति विभाग है उसमें बहुत बार हम लोगों को ब्लड का जरूरत पड़ता है। इसको छोड़ करके हमारे यहाँ डायलिसिस होता है, तो डायलिसिस के सेशंस में वेरी फ्रीक्वेंटली हमें ब्लड का जरूरत पड़ता है। तो ये सब परिस्थितियां हैं जिसमें ब्लड का रिक्वायरमेंट होता
0: है। जी जी, डॉक्टर साहब, और अगर हम हमारे तवांग के बारे में चर्चा करें तो इस समय जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तवांग की स्थिति, जो ब्लड बैंक है उसकी परिस्थिति हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि उपलब्धता क्या है, यहाँ के लोग कितने जागरूक है इसको लेकर, यानी रक्तदान को लेकर।
1: हमारा जो ब्लड बैंक है वो फुली फंक्शनल है
0: जी।
1: और हमारे ब्लड बैंक में स्टोरेज कैपेसिटी 350 बैग्स का है। जरूरत पड़ा तो ये कैपेसिटी हम बढ़ा भी सकते हैं, इट कैन गो अप टू 700 बैग्स। चूंकि पॉपुलेशन हमारा इतना नहीं है और रिक्वायरमेंट इतना नहीं है, तो हम बहुत

0: कलेक्ट करके नहीं रखते हैं, क्योंकि ज्यादा कलेक्ट करके रखेंगे तो हमारा जो वेस्टेज कंपोनेंट है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हम नॉमिनल एक कलेक्शन करके रखते हैं, जब भी किसी को जरूरत होगा तो हम उसका वितरण करते हैं।
1: जैसे कि एक व्यक्ति को रक्तदान करने के लिए उम्र, वजन और उसकी स्वास्थ्य से संबंधित किन बातों का ध्यान रखा जाता है रक्तदान के पहले?
0: कोई भी व्यक्ति 18 से लेकर के 65 इयर्स के बीच में जिसका वजन 45 किलो से ऊपर हो और जिसका हीमोग्लोबिन 11 से ऊपर हो और जिसको कोई भी बीमारी ना हो तो वो कभी भी आके ब्लड डोनेट कर सकता है। और ब्लड डोनेशन हर 3 महीने में एक बार आदमी कर सकता है।
1: डॉक्टर साहब, ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को बहुत पहले, कुछ 10 साल पहले गंभीर बीमारी से वो जूझ रहे होंगे, लेकिन अब वो ठीक है बिल्कुल, तो अब वो क्या रक्तदान कर सकते हैं?
0: अगर उसको ब्लड के द्वारा फैलने वाला कोई संक्रमण, इन्फेक्शन ना हो तो वो दे सकता है।
1: एक रक्तदाता द्वारा रक्त दान किया गया जो है, कितने समय के लिए सुरक्षित है? जैसे कि उसके लिए कोई एक्सपायरी डेट्स होते हैं कि नहीं?
0: नॉर्मली हम 3 महीने तक वो ब्लड को स्टोर करते हैं, उसके बाद में ब्लड फिर हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो जो उसका लॉन्जिटिविटी हो 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स के बाद में उसको हम डिस्कार्ड करते हैं।
1: तो 3 महीने के अंदर अंदर किसी को दान करने की जरूरत पड़े तो कर देते हैं, नहीं तो फिर डिस्पोज कर देते हैं जी। और एक व्यक्ति जो है ब्लड डोनेट के लिए या रक्तदान के लिए आते हैं, तो व्यक्ति जो है एक बार में कितने यूनिट उससे ब्लड डोनेट करवाया जा सकता है?
0: जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास ब्लड डोनेशन के लिए आता है तो सबसे पहले उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हम।
1: हाँ,
0: उसका ब्लड प्रेशर देखा जाता है, पल्स रेट, वजन सब देखा जाता है। फिर हमारे पास एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है जिसमें अपना स्वेच्छा से अपना हेल्थ का बारे में उसमें इन्फॉर्मेशन देता है। अगर सब कुछ सही है, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो वेल रेस्टेड है, अच्छे से उसने रेस्ट किया है, कुछ खा करके आया है, जब सब कुछ सही लगेगा फिर हम उसको ब्लड डोनेशन के लिए ले जाते हैं। और एक बार में एक आदमी से 350 ml या 1 यूनिट ही निकाला जाता है।
1: और इसमें जो है पुरुष और महिला के लिए क्या अलग अलग कोई प्रक्रिया है, या फिर महिलाओं के लिए रक्तदान से जुड़ी विशेष सावधानियां हैं इसमें?
0: महिलाओं में चूंकि एनीमिया थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंट है तो अनियमित जो महिलाएं हैं उनको हम वॉलंटरी ब्लड डोनेशन से परहेज करने को बोलते हैं। उसको छोड़ करके अगर किसी महीने स्त्री का महीना चल रहा हो तो उस दौरान हम उससे ब्लड नहीं लेते, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनसे हम ब्लड नहीं लेते हैं। बाकी कोई भी स्वस्थ महिला, एडल्ट 18 से 65 एज के बीच, जिसको कोई भी ब्लड रिलेटेड संक्रमण ना हो और कोई अदरवाइज कोई बीमारी ना हो तो उससे हम ब्लड ले सकते हैं।
1: आपने भी देखे होंगे, सुने होंगे कि हमारे समाज में एक आम सी धारणा है, जैसे रक्तदान के बाद हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है हम ये भी जानना चाहेंगे। और साथ साथ जो कोई भी रक्तदान करने के लिए आगे आना भी चाहते हैं लेकिन ऐसी बातों को सुनकर वो फिर आगे नहीं आते हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? हालांकि मैंने कुछ साल पहले रक्तदान की थी लेकिन मुझे तो कोई ऐसी अनुभव नहीं आई, फिर भी आज जो है आप हमारे आकाशवाणी दवा के स्टूडियो में साक्षात आए हैं, तो मैं इस सुनहरा मौका को गंवाना नहीं चाहूंगी सर।
0: ब्लड डोनेशन के लिए अगर कोई आता है, अगर वो हेल्दी है, वेल रेस्टेड है और मेंटली एकदम प्रिपेयर होके आता है तो उसको जनरली ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। आफ्टर डोनेशन के बाद में वीकनेस का होना मतलब स्वाभाविक तो नहीं है। इसका कारण ये है कि 350 ml जो ब्लड हम दे रहे हैं वो बहुत ही कम है, तो उससे बॉडी में जो बॉडी का हीमोस्टेसिस है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है जनरली। हाँ, अगर आप ब्लड डोनेशन करते ही एकदम से उठ गए तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा चक्कर वक्कर आए, वो सामान्य बात है
1: जी।
0: तो इसलिए हम क्या करते हैं, इमीडिएटली आफ्टर डोनेशन लोगों को एकदम से उठने के लिए मना करते हैं।
1: हाँ जी।
0: तो इमीडिएटली आफ्टर डोनेशन कुछ टाइम के लिए वो उसी कोच में लेटे रहते हैं और थोड़ा सा रिप्लेसमेंट लिक्विड्स, जैसे कोई जूस पी लिया या थोड़ा सा पानी पी लिया, क्योंकि क्या है ब्लड जब आप देते हैं तो थोड़ा सा फ्लूइड लॉस हो रहा है बदन से, तो उस फ्लूइड को यदि हम रिप्लेस कर लेते हैं और थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, तो इसे 5-10 मिनट का रेस्ट और थोड़ा सा फ्लूइड रिप्लेसमेंट अगर ये करते हैं तो कमजोरी या चक्कर वक्कर ये सब भी नहीं आता है। और ये जो कमजोरी वाला बात बोला, ये एक गलत धारणा है जो लोगों में घर करके रखा हुआ है, तो कोई कमजोरी नहीं होता है, ये सिद्ध एक बात है
1: जी। मैंने इसके जो रक्तदान करने के फायदे तो बहुत सुना लेकिन जो इसके नुकसान भी होते हैं कई बार कहते हैं, हालांकि आपने अभी इसके बारे में बता भी दिया कि नुकसान नहीं होते, फिर भी फायदे और नुकसान दोनों में आपसे जानना चाहूंगी इस कार्यक्रम में।
0: रक्तदान सबसे बड़ा जो पुण्य एक इंसान

0: कर सकता है तो वो रक्तदान है। जब आदमी रक्तदान करता है तो वो अपने अपना जो ये शरीर है उसका एक हिस्सा किसी को दे रहा है, तो जो एक बार दान करता है उसी को पता होता है कि वो फीलिंग क्या है, किसी को जीवन देना, किसी को अपना जो शरीर है उसका एक अंग देना जैसा
1: जी,
0: है। तो ये सबसे पहला बात तो ये है कि फील गुड फैक्टर जो आता है रक्तदान के बाद
1: जी, जी।
0: और दूसरा बात ये है जो रक्त का आवश्यकता है वो हमेशा बना हुआ है
1: जी,
0: जो आंकड़ा जो कहता है वो ये कहता है कि जो पॉपुलेशन है उसका 1% अगर कोई 1% डोनेशन देता है तो वो पॉपुलेशन का जो नीड्स कवर होता है। तो इसलिए रक्तदान करते रहना चाहिए क्योंकि रक्तदान करके ही ब्लड बैंक में रक्त होगा किसी के जरूरत के लिए। रहा बात में आपने जो फायदा और नुकसान का जो बात किया है, नुकसान तो बहुत ही कम है
1: जी।
0: लोगों में एक ये धारणा भी है कि रक्तदान करने से इन्फेक्शन हो सकता है। रक्तदान करने से कभी इन्फेक्शन नहीं होता है
1: जी।
0: जो रिसिपियंट है रक्त का, हाँ अगर रक्त को अच्छे से स्क्रीन नहीं किया तो जो रिसिपिएंट है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, डोनर को कभी भी इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है। तो ये बात मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ, डोनर को कभी भी किसी इन्फेक्शन का डर नहीं है
1: जी।
0: और एक बात है, ब्लड डोनेशन करता है उसको और भी बेनिफिट्स है। सबसे पहला बात तो मैंने ये बताया कि दान करने का जो सुख है वो उसको मिलता है। दूसरा बात ये है, अगर नियमित रूप से आप ब्लड डोनेट करते हैं तो इससे आपको हार्ट और आपको जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसको भी प्रोटेक्शन मिलता है
1: जी, जी, जी।
0: और ये भी है कि जो वेट जो रेगुलेशन है वो भी ब्लड डोनेशन करने से वेट रेगुलेट कर सकते हैं। इससे भी अच्छा बात यह है कि कुछ कुछ कैंसर से भी प्रिवेंशन मिलता है ब्लड डोनेशन करने से। तो ब्लड डोनेशन का जो फायदा है वो बहुत ज्यादा है और नुकसान मेरे ख्याल से ना के बराबर।
1: जी जी जी, क्योंकि डॉक्टर साहब अक्सर लोग ऐसे कहते हुए फिरते हैं कि नियमित रूप से रक्तदान करने से जो है हमारे शरीर में अपनी जो खून है वो कम हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है।
0: एकदम गलत है। नियमित रूप से अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो एक तरह से ये भी सोच सकते हैं कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है बॉडी में वो है 120 दिन। अगर आप 350 ml डोनेट करते हैं, एक तरह से आपका बॉडी जो है वो नया आरबीसी जब बनाता है तो आपका ब्लड जो है वो रिप्लेनिश हो रहा है। तो इसको इस तरह से देखें, ना कि ये सोचे कि आपका ब्लड लॉस हो रहा है।
1: जी जी,
0: आपका ब्लड इनडायरेक्टली रिप्लेनिश हो
1: जी। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए है कि ब्लड डोनेट करने के बाद रक्त की जांच किस प्रकार से की जाती है ताकि जरूरतमंद मरीज को जो है सुरक्षित रक्त मिल सके।
0: ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है
1: जी।
0: एक बार ब्लड जब हम किसी डोनर से लेते हैं तो उसको डायरेक्टली स्टोर करके उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। उसको पहले लैब में टेस्ट करते हैं और टेस्ट भी स्टेट ऑफ द आर्ट जो मशीनरी है उससे टेस्ट करते हैं। इस चीज का बहुत ही खास ध्यान रखा जाता है कि वो ब्लड पूरी तरह से स्क्रीन्ड हो
1: जी, जी।
0: आपको पता है ब्लड और ब्लड से रिलेटेड बहुत से इन्फेक्शंस हैं, जैसे HIV 1N2, आपका HCV, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, मलेरिया, सिफिलिस, तो इन सब जो भी बीमारियां हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से और एलेजा और बाकी मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी से इसको स्क्रीन किया जाता है ब्लड को पहले। स्क्रीन करने के पश्चात अगर ये सब कुछ में क्लियर निकलता है फिर हम उसको स्टोर करते हैं और बाद में फिर उसको यूज करते हैं। इस बीच अगर किसी भी ब्लड यूनिट में किसी भी बीमारी का पॉजिटिविटी आ गया तो उस ब्लड को हम डिस्कार्ड कर देते
1: हैं। किसी व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना हो, रक्तदान करना चाहते हैं, तो जो जिला अस्पताल तवांग में स्थित जो ब्लड बैंक है वहाँ पर कार्य दिवसों में कभी भी समय आ सकते हैं, कोई पर्टिकुलर डे ऐसे नहीं है, है ना?
0: नहीं, हमारा जो ब्लड बैंक है वो 24/7 ओपन है और तो कोई भी वॉलंटरीली अगर ब्लड देना चाहेगा तो कभी भी आ सकता है। और हम फ्रीक्वेंटली बीच बीच में हम ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगाते हैं, तो अगर कोई इच्छुक है तो उसमें भी आके ब्लड डोनेट कर सकता है।
1: कई बार ऐसे भी लोग आते होंगे जिसको अपने ब्लड ग्रुप बताने होंगे, तो रक्तदान से पहले शायद अपना ब्लड ग्रुप जानना तो सबसे जरूरी होते होंगे, तो क्या आप साथ साथ में ब्लड ग्रुप भी जांच करवा देते हैं?
0: जनरली आजकल सभी को अपना ब्लड ग्रुप जनरली पता होता है, अगर किसी को पता नहीं भी होता है तो हम उसको जांच करके बता देते हैं।
1: जी जी, ब्लड ग्रुप्स जो है कितने तरह के होते हैं, और आप जो है यहाँ पर बहुत ही अनुभवी चिकित्सा अधिकारी हैं, तो सबसे ज्यादा मतलब हमारे तवांग में कौन सी ब्लड ग्रुप पाया जाता है?
0: ब्लड ग्रुप्स का जब बात करते हैं तो आप सभी को पता है ब्लड ग्रुप्स AB और O, फिर इसमें RH पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी जब लगा दें तो A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, फिर

0: नेगेटिव ग्रुप्स में ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव, ये प्रोमिनेंट ब्लड ग्रुप्स हैं। यहाँ बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हमें बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, इन पॉजिटिव ग्रुप्स का ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। नेगेटिव ग्रुप्स वैसे भी रेयर हैं, तो हम जो स्टोरेज करते हैं उसमें ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव ग्रुप्स ज्यादा स्टोर करते हैं, ओ पॉजिटिव स्टोर करते हैं। नेगेटिव ग्रुप्स हम स्टोर नहीं करते, क्योंकि अगर स्टोर कर भी लिया तो वो यूसेज नहीं होता है उसका और वो वेस्ट हो जाता है। तो नेगेटिव ग्रुप्स अगर हमको यदि जरूरत पड़ता है तो हम नेगेटिव ग्रुप्स वाले लोगों का एक रजिस्टर बना के रखते हैं, और जब हमको वेरी रेयरली अगर जरूरत हुआ तो हम ओवर द फोन वो जो पर्टिकुलर पर्सन है नेगेटिव ग्रुप वाला उसको बुला के उसको ब्लीड करके फिर वो ब्लड हम यूज करते हैं। थियोरेटिकली तो ओ नेगेटिव इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर, ये थियोरेटिकली ये माना जाता है कि ओ नेगेटिव जो है वो सभी को दे सकता है, बट प्रैक्टिकली जो है ये एकदम अनटिल अनलेस एकदम ग्रेव इमरजेंसी ना हो ये जो चीज हम यूज नहीं करते। हम जब ब्लड डोनेशन करते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूज करते हैं तो उसमें इवन सेम ब्लड ग्रुप में भी क्रॉस मैचिंग करके, अगर सेम ब्लड ग्रुप है तब भी ब्लड को क्रॉस मैच करना पड़ता है, मैचिंग करना पड़ता है, क्योंकि ये जो ब्लड ग्रुप का जो एंटीजेंस है जो हम लोग ब्लड ग्रुप्स बोलते हैं वो तो बहुत मेजर एंटीजेंस है, और भी बहुत माइनर एंटीजेंस बहुत होता है ब्लड में, तो उन सब को मैच करके तभी ब्लड चलाया जाता है।
1: अच्छा, मतलब इसमें डॉक्टर साहब दोनों का जो है रक्तदाता और जो मरीज है जिसको रक्त की जरूरत है तो दोनों के ब्लड ग्रुप जो है एक जैसा होने से भी
0: सिमिलर होना चाहिए, और उससे भी आगे दोनों को क्रॉस मैच करना पड़ता है।
1: हाँ, उसमें अगर नहीं मिलते हैं,
0: तो क्रॉस मैचिंग में यदि नहीं मिलता है तो फिर हम वो जो ग्रुप है उसको नहीं देते हैं।
1: जी जी जी। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे युवा श्रोताएं हैं उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे जो आने वाले आगामी 1 अक्टूबर को जो स्वैच्छिक रक्तदान दिवस हम मनाने जा रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए?
0: सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मुम्पा सोसाइटी और तवांग का जो जनता है वो ब्लड को लेकर के बहुत ही कोऑपरेटिव है। हमें बहुत ही कम इंस्टेंसेस ऐसा हुआ जिसमें कमी का दिक्कत हुआ हो। यहाँ बहुत से एनजीओस हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा, बीइंग मुम्पा फाउंडेशन, ह्यूमैनिटीज ग्रुप, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सोसाइटी, और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में अपना भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा
1: जी जी।
0: तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत ही सक्रिय हैं। तो मैं जब भी हमें कोई भी दिक्कत होता है या कमी होता है तो मैं इनसे कॉन्टेक्ट करता हूँ और ये लोग बढ़ चढ़ के आके वॉलंटरी ब्लड डोनेशन देते हैं।
1: जी जी जी।
0: और मैं और इस मंच का लाभ उठाते हुए उल्लेख करना चाहता हूँ इंडियन आर्मी, SSB और ITBP के जवानों का, ये भी नियमित रूप से आकर के या तो हमारा जो ब्लड सेंटर है वहाँ आके डोनेशन देते हैं या फिर वो अपना कैंप्स में कभी कभार इनका जो कैंटोनमेंट है वहाँ पे कैंप्स लगा के वहाँ से भी हमें डोनेशंस देते हैं।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: मैं इस माध्यम से इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस और मिलिट्री पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, हमारा जो NGOs है और एज अ होल तवांग जो जनता है सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप इतना प्रोएक्टिव हैं, इतना कोऑपरेटिव है कि हमें आज तक ब्लड का कमी नहीं हुआ है, और मैं ये भी आशा रखता हूँ कि ये जो जील है आगे भी बरकरार रहे।
1: जी, तो डॉक्टर साहब आज आपने हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में अपने कीमती समय निकालकर आए, हमारे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में भाग लिया। आगामी 1 अक्टूबर को आयोजित होने वाले नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे के बारे में जानकारियां दी और साथ साथ रक्त के महत्व, इससे जुड़े हुए कई सारे भ्रांतियां, इसकी प्रक्रिया, बहुत सारे रक्तदान के बारे में आपने हमारे श्रोताओं को जानकारियां दी। तो मैं डॉक्टर साहब इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खंडू ड्रोवा जांगमू जिला अस्पताल तवांग के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर तेंजिन कोंगा से 1 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर भेंट वार्ता। भेंट करता थे मिस दोर्जी ड्रमा। इसी के साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए धुनों व गीतों पर आधारित कार्यक्रम साज और आवाज। आई श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला धुन प्रस्तुत है फिल्म 14वीं का चांद से।

आई श्रोताओं, फिल्म चौदहवीं के चांद की इसी धुन पर सुनिए यह गीत, गायक मोहम्मद रफी के स्वर में। गीत शकील बदयोनी के है, वह संगीत रवि का।

लीजिए श्रोताओ, इसी धुन पर सुनते हैं यह गीत शंकर जयकिशन द्वारा संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी के लिखे बोल पर। इस गीत को स्वर दे रहे हैं लता मंगेशकर और मन्ना देने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही दोनों व गीतों पर आधारित कार्यक्रम साजो रवाज अब यही पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनिएगा अब से ही थोड़ी देर बाद, यानी शाम के 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात 7:50 पर रीजनल न्यूज। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। अखिल निशी छात्र संघ अनसू ने आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बैठक कर प्रस्तावित 48 घंटे के बंद के आह्वान को रद्द कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टाइट के टी पारनायक ने जीरो में आयोजित जीरो म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेते हुए संगीत को एक सार्वभौमिक भाषा कहा है जो सीमाओं से परे जाकर लोगों के दिलों को जोड़ता है और सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक जैसे आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा और अभिव्यक्ति को समझने, आत्मविश्वास विकसित करने तथा अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए एक रचनात्मक मंच प्रदान करते हैं। राज्यपाल ने कहा है कि यह महोत्सव आज भारत के सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्र संगीत समारोह में से एक बन चुका है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि किस तरह संस्कृति, रचनात्मकता और सामुदायिक भागीदारी एक साथ मिलकर युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी ईटानगर की ओर से बेहतर समाज के लिए जिम्मेदार पत्रकारिता, जागरूक नागरिक और नशामुक्त भारत विषय पर वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोअर सुबनसिरी क्षेत्र के कार्यरत पत्रकारों और सेंट क्लारेट कॉलेज जीरो के जनसंचार विभाग के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पत्रकारों और मीडिया क्षेत्र में भविष्य बनाने की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को तथ्य जांच, शोध, सूचनाओं के सत्यापन, विभिन्न स्रोतों से जानकारी तथा मीडिया साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए मंच प्रदान किया गया। ईटानगर स्थित देरानाथुम गवर्नमेंट कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा कॉलेज

0: के जुबली हॉल में हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. तुम्बम अरबा चौमो लिली ने राष्ट्र की एकता में हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हिंदी विभिन्न भाषाएं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही उन्होंने अपनी मातृभाषा और स्थानीय बोलियों के संरक्षण के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी से अपनी मातृभाषा और स्थानीय बोली को सीखने, बोलने, सम्मान देने और संरक्षित करने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों को हिंदी के साथ अपनी भाषा विरासत के प्रति भी सम्मान और गर्व की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। महिला एवं बाल विकास विभाग ईस्ट सियांग द्वारा पासीघाट में राष्ट्रीय पोषण माह 2026 के तहत आंगन का उत्सव के भव्य उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया। इसके साथ ही मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के अंतर्गत हितधारक समन्वय बैठक भी आयोजित की गई। कार्यक्रम में उपायुक्त सहित स्थानीय प्रशासन के विभिन्न अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। उप निदेशक ICDS सह जिला बाल संरक्षण अधिकारी MT पादुंग ने आंगन का उत्सव के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जिले में मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के तहत कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमियों को दूर करने के महत्व पर आवश्यकता पर बल दिया। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री तथा सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से संबंधित सशक्त उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष अजिंक्ता सिंह ने यिंग्योंग स्थित देसी कॉन्फ्रेंस हॉल में विभागाध्यक्षों, प्रशासनिक अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्री ने लोगों से लगातार संवाद और सार्थक बातचीत बनाए रखने पर जोर दिया, ताकि विश्वास कायम करते हुए लोगों की चिंताओं का समाधान किया जा सके और प्रभावी संवाद सुनिश्चित हो सके। उन्होंने परियोजना से संबंधित सकारात्मक तथ्यपरक और जिम्मेदार संवाद की आवश्यकता पर बल दिया। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पारदर्शी संवाद के माध्यम से लोगों की चिंताओं का समाधान किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सत्यापित जानकारी की जनता तक पहुंचाई जा सके। कृषि विज्ञान केंद्र नामसाई ने आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान AICRP ऑन पोल्ट्री परियोजना के तहत कुल 1200 कलिंगा ब्राउन नस्ल के पोल्ट्री चूजों को 7 स्टार्टअप फीड के 38 बैग 50 किसानों को वितरित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को खेत स्तर पर उन्नत मुर्गी पालन पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था, साथ ही वैज्ञानिक तरीके से मुर्गी पालन को बढ़ावा देना और बेहतर पोल्ट्री उत्पादन के माध्यम से किसानों की आजीविका के अवसर को और बढ़ावा देना था। और सार्वजनिक क्षेत्र और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कल यानी रविवार को भी खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani Itanagar, the news read by Indu Chukwu. The All Nishi Student Union today called off the proposed 48 hours bunt after meeting with Chief Minister Pema Khandu. Governor K.T. Parnayak, while attending the Zero Festival of Music at Zero, termed music a universal language that transcends boundaries, connects hearts and inspires positive thinking, and said that events like Zero Festival of Music provides a constructive platform for young people to express themselves, develop confidence and channel their energy into creative pursuits. Governor Parnayak also apprised that the festival has emerged as one of India's most celebrated independent music festivals and a remarkable example of how culture, creativity and community participation can come together to create opportunities for the youths. The Press Information Bureau Itanagar organized a vartalap on the theme Responsible Journalism, Informed Citizen and Nasha Mukt Bharat for Better Society, bringing together working journalists from the Lower Subansiri region and students of the Mass Communication Department of St. Clairet College Zero. The program provided a platform for journalists and aspiring media professionals to discuss fact-checking, research verification, cross-checking of information and media literacy. The Department of Hindi, Dehradun Government College, Itanagar organized the Hindi Pakwara Village.

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही देशभक्ति गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के ठीक 8 बज चुके हैं। निजी श्रोताओं, अब पेश है व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पसंद किए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला फरमाइश हमें प्राप्त हुई है मेरठ से दिग्दर्शन गौर और कविता गौर, और निमादाबाद जिंद हरियाणा से आप है जसबीर सिंह अरोरा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। आप सबकी फरमाइश पर पेश है फिल्म कोयल से यह गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल आवाजों में। इंडिवर के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने। इस गीत के बोल है तन्हाई तन्हाई।

चंद व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पसंद किए गए चंद फरमाशी गीतों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए लीजिए आनंद लीजिए। यह अगला फरमाइश हमें प्राप्त हुई है तोरोवाल नवन शहर पंजाब से। आप है गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रियाम थांडी, बेबी वमिका और वानी थांडी। आप सबकी पसंद पर आई सुनी फिल्म सरस्वती चंद्र से यह गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इंडिवर द्वारा शब्दबद्ध पर इसे संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने और इस गीत के बोल है फूल तुम्हें भेजा है।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश हमें प्राप्त हुई है वरिंग खेड़ा पंजाब से। आप है मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोरा और मालवा रेडियो शोरता संघ हिंगरी रतनाम मध्य प्रदेश से। आप है जगदीश दाखड़ नियमा, रंजूबाई दाखड़, युवराज सिंह दाखड़ और शिवंगी दाखड़। आप सबकी फरमाइश पर पेश है फिल्म दो बदन से यह गीत आशा भोसले की स्वर में। शकील बडियोनी के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत दिया है रवि ने। इस गीत के बोल है जब चली ठंडी हवा।

श्रोतम, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना न भूले, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा ये रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओ, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनिएगा अब से ही थोड़ी देर बाद, यानी रात के 8:15 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित अरुणाचल न्यूज रेल, 8:30 पर आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित स्पोर्ट्स कैन, 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के ठीक 9 बजे सुनेंगे न्यूज़ @9। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं सिद्धार्थ सिंह अपने को होस्ट प्रशांत कुमार के साथ आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
1: नमस्कार सिद्धार्थ, एशियाई खेलों में जारी रोमांच और खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ खेल जगत की हर अहम हलचल पर रहेगी हमारी पैनी नजर।
0: तो प्रशांत, शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर।
1: भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर जीता स्वर्ण पदक।
0: एथलेटिक्स में तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉर्ट पुट स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने पुरुष मैराथन में रजत और प्राची ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक देश के नाम किया।
1: निशानेबाजी में महिलाओं के 50 मीटर राइफल थ्रीपी टीम स्पर्धा में भारतीय टीम ने जीता है रजत पदक।
0: स्क्वैश में जोशना सेंथिल कुमार की जोड़ी ने जीता कांस्य पदक। अनाहत सिंह और अभय सिंह ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई।
1: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।
0: और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एक दिवसीय मुकाबला कल।

0: जी हाँ दोस्तों, खेल खबरों में सबसे पहले एशियाई खेलों की बात करते हैं, जहां आज का दिन भारत के लिए बहुत अहम रहा।
1: बिल्कुल अहम रहा सिद्धार्थ।

0: भारतीय महिला और पुरुष टीम दोनों ने कबड्डी में परचम लहराए हैं। एशियाई खेलों में आज भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। दोनों ही टीम ने फाइनल में ईरान को हराया। सुनते हैं सरफिरोजी की ये रिपोर्ट।
1: इंडिया टेक गोल्ड एंड इट्स बैक टू बैक गोल्ड फॉर टीम इंडिया इन द वुमेन्स कबड्डी। इंडिया बैग द थर्ड गोल्ड ऑफ द गेम्स एंड इन एन अनबिलीवेबल कॉन्टेस्ट इन एन एक्सेप्शनल मैच वर्सेस ईरान इट इज इंडियाज गर्ल्स दैट डिलीवर गोल्ड वंस अगेन। इंडिया विन गोल्ड एट द एशियन गेम्स बैक टू बैक। इंडिया हैव नाउ वन सिक्स ऑफ देयर सेवन एनकाउंटर्स वर्सेस देम। दे हैव वन एवरी गोल्ड मेडल मैच वर्सेस ईरान एंड इंडिया हैव एडेड अ फोर्थ गोल्ड at Aichi Nagoya 2026, courtesy of the men's kabaddi team in a blockbuster clash.
2: सुनील कुमार की कप्तानी में भारतीय पुरुष टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले की शुरुआत के साथ ही भारत और ईरान के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। भारतीय टीम ने मैच में अपनी पकड़ बनाते हुए 10-8 की बढ़त हासिल की। अर्जुन देशवाल की एक के बाद एक शानदार रेड के चलते भारतीय टीम अपनी बढ़त को 12-19 करने में सफल रही। दूसरे हाफ में भी भारत और ईरान के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। भारतीय टीम ने ईरान को बैकफुट पर ढकेलते हुए 34-27 की अहम बढ़त बना ली। भारत की ओर से राहुल ने मैच के अंतिम क्षणों में शानदार टैकल करते हुए बढ़त को 36-29 तक पहुंचाया। भारत ने अपना दबदबा जारी रखते हुए खिताबी मुकाबले को 40-34 से अपने नाम किया। इससे पहले महिला कबड्डी टीम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। फाइनल में देश की बेटियों ने ईरान को कड़े मुकाबले में 37-34 से शिकस्त दी। पूरे टूर्नामेंट में भारत की ओर से संजू देवी ने एक बार फिर अहम भूमिका निभाई। भारतीय टीम में पूजा राजरानी, सोनाली विष्णु शिंगटे, पुष्पा भावना देवी, रितु संजू देवी, रितु नेगी, मनीषा कुमारी, पिंकी रॉय, ज्योति और निकिता शामिल थी। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
3: जी हाँ, अगर टीम के प्रदर्शन पर नजर डालें तो पुरुष कबड्डी की हम बात करें तो 1990 से 2026 तक खेले गए एशियाई खेलों के 10 इवेंट में भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने 9 बार गोल्ड जीता है। सिर्फ 2018 में भारतीय पुरुष टीम गोल्ड जीतने से चूक गई थी, लेकिन यह सिलसिला लगातार जारी है और आज तो प्रशांत पुरुष और महिला दोनों टीमों ने चूंकि हमारे लिए गोल्ड जीता है तो उनके लिए ये गीत तो बनता है।

0: और सिद्धार्थ हम श्रोताओं को ये भी बताना चाहेंगे कि पिछले एशियन गेम्स में भी भारतीय पुरुष टीम ने ईरान को ही हराकर चैंपियन बनी थी, और वहीं महिला टीम की अगर बात करें तो हांगझोउ 2023 एशियन गेम्स में भी स्वर्ण पदक जीता था। और अब बात एथलेटिक्स पर भी कर लेते हैं सिद्धार्थ।
1: हाँ बिल्कुल, दो बार के डिफेंडिंग चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों के शॉट पुट फाइनल में रजत पदक अपने नाम किया। हालांकि तजिंदर पाल लगातार तीसरी बार एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक से चूक गए। 2018 जकार्ता और 2022 हांगझोउ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले तूर ने 20.06 मीटर के थ्रो के साथ मजबूत शुरुआत की और अपने दूसरे प्रयास पे 20.26 मीटर का थ्रो कर मेडल की दौड़ में बने रहे।
0: इसके बाद अपने तीसरे प्रयास में 19.77 मीटर और चौथे प्रयास में 19.71 मीटर का थ्रो किया। तूर ने अपने पांचवें थ्रो में 20.64 मीटर का बेहतरीन प्रदर्शन किया। तूर का छठा और अंतिम प्रयास फॉल करा दिया गया, जिससे प्रतियोगिता में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 20.64 मीटर ही रहा। इसके साथ ही उन्होंने एक और पदक देश के नाम कर दिया है सिद्धार्थ।
1: जी हाँ, आज का दिन तजिंदर पाल सिंह तूर के नाम रहा, और हम सिर्फ यही कह सकते हैं उनके लिए

0: जी हाँ बिल्कुल, शाबाशी का काम तो किया ही है और अब हम नजर डालते हैं मैराथन पर।
1: मैराथन में भी आज कई पदक आए हैं सिद्धार्थ।

0: भारत के सावन बरवाल ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में रजत पदक देश के नाम किया। बरवाल के पदक ने इस इवेंट में देश के मेडल जीतने का 44 साल का इंतजार पूरा किया। सिद्धार्थ, भारतीय नेशनल रिकॉर्ड होल्डर बरवाल नागोया में एक कड़े मुकाबले वाली रेस में मेडल की दौड़ में बने रहे और फिर दूसरा स्थान हासिल किया।
1: जी, उनका सिल्वर मेडल 1982 के एडिशन के बाद भारत का पहला एशियन गेम्स मैराथन मेडल है और विदेशी धरती पर किसी भारतीय पुरुष का पहला मेडल है। मैराथन भारतीय समय के अनुसार सुबह 4 बजे शुरू हुई, जिसमें बरवाल और साथी भारतीय धावक कार्तिक करकेरा का भी जिक्र करना होगा। 19 प्रतिभागी इस दौड़ में शामिल थे। बरवाल शुरुआती स्टेज में लीडिंग ग्रुप में मजबूती से बने रहे, फिर जैसे जैसे रेस आगे बढ़ी उन्होंने सबसे आगे अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आधे रास्ते तक बरवाल पहले ही दूसरे स्थान पर थे। इसके बाद जब रेस आगे बढ़ने लगी तो मेडल की दौड़ में बने रहे और पूरा जो अंतिम जो मुकाबला हुआ उसमें वो दूसरे स्थान पर नजर आए।
0: और उधर एथलेटिक्स में अगर हम बात करें तो प्राची चौधरी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक देश के नाम किया है। उन्होंने 53.21 सेकंड का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया।
1: जी हां, महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में बहरीन की सालवा इन्नासेर ने स्वर्ण, वहीं ईरान की जहरा जारी मनुजान ने रजत पदक जीता। इसी स्पर्धा में भारत की किरण ने 5वां स्थान हासिल किया। लेकिन जिस तरह से प्राची चौधरी ने आज जो हमें मेडल जिताया है उनके लिए हम यही कहेंगे।

0: जी हाँ, तीनों ने क्वालिफिकेशन राउंड में कुल 1763 अंक हासिल किए और जिस तरह से आज भारतीय तिकड़ी पूरे क्वालिफिकेशन में मेडल की दौड़ में बनी रही और जिस तरह से नीलिंग प्रोन और स्टैंडिंग पोजीशन में उनके स्कोर ने एक मजबूत टीम टोटल बनाया, वो वाकई में काबिले तारीफ है।
1: जी सिद्धार्थ, और हम आगे बढ़ते हैं और स्क्वैश पे भी बात कर लेते हैं। एशियन गेम्स 2026 में भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार ने स्क्वैश में कांस्य पदक जीत लिया। हालांकि भारतीय जोड़ी को सेमीफाइनल में हांगकांग चीन की जोड़ी ली काई और तांग मिंग होंग से हार का सामना करना पड़ा।
0: जी हाँ, एक बेहद रोमांचक और करीबी मुकाबले में भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में 1-2 से हार गई। इस हार के साथ उनका फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया। तीसरे निर्णायक गेम में भारतीय जोड़ी 10-8 से आगे थी और उसके पास मैच जीतने के 3 मौके थे। हालांकि वे इन मौकों का फायदा नहीं उठा सके। दबाव भरे क्षणों में जोशना का एक शॉट बाहर चला गया जिससे वे निर्णायक गेम से हार गए। उन्हें ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा, लेकिन ये कोई कम बात नहीं है जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने मेडल्स जीता है। चिनप्पा का 6th एशियन गेम्स मेडल है
1: और इससे पहले ये अनुभवी खिलाड़ी 3 कांस्य और 2 रजत पदक जीत चुकी है। हालांकि उनके मेडल कलेक्शन में अभी भी इस इवेंट का गोल्ड मेडल शामिल नहीं हो पाया है। चिनप्पा और सेंथिल कुमार ने कल क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस की जेमिका अरिबाडो और डेविड पेलिनो को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी और तभी भारत के लिए मेडल पक्का हो गया था।
0: और प्रशांत, एक अच्छी खबर और है। अनाहत सिंह ने जापान की सतोमी वाता नाबे को 3-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस जीत के साथ ही अनाहत ने एशियन गेम्स 2026 के महिला सिंगल्स स्क्वैश फाइनल में जगह बना ली है। अनाहत एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं।
1: उधर अगर पुरुषों की भी बात करें तो वहां से भी सिद्धार्थ अच्छी खबर आ रही है। अभय सिंह ने पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को 3-0 से हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है।
0: और अब बात कर लेते हैं हॉकी की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों के

0: फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। आज भारतीय टीम ने पूल ए के मुकाबले में जापान को 2-0 से हराया।
1: ये इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की लगातार सिद्धार्थ चौथी जीत है। कावासाकी जुको हॉकी स्टेडियम में लगातार बारिश के बीच खेले गए इस मैच में जापान ने भारत को कड़ी टक्कर दी। हालांकि अभिषेक और कप्तान हरमनप्रीत सिंह के गोल मौजूदा चैंपियन को प्रतियोगिता के अंतिम चार चरण में पहुंचाने के लिए काफी थे। भारतीय टीम पुल ए के अपने आखिरी मुकाबले में सोमवार को बांग्लादेश से भिड़ेगी।
0: जी हाँ, और यहाँ पे ये भी बता दें कि जापान

0: की कोशिश करती नजर आई। 15वें मिनट में अभिषेक ने गोलकीपर को छकाते हुए गेंद को गोल में डाला और पहले क्वार्टर के आखिर में भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। 40वें मिनट में हरमनप्रीत ने फ्लिक मारा जिससे गोलकीपर को कोई भी मौका नहीं मिला और भारत 2-0 से आगे हो गया।
1: बिल्कुल, तब सबकी नजरें सेमीफाइनल मुकाबले पर लगी रहेंगी। प्रिया घांगस ने आज महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 16 में साउथ कोरिया की दो बार की विश्व चैंपियन ओह योनजी को 5-0 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। प्रिया का सामना अब सोमवार को क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान की मिसगेना समादोवा से होगा।
0: इससे पहले कपिल ने पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 16 में ईरान के सैम अस्ताकी को 5-0 से हराया। अब कपिल सोमवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में साउथ कोरिया के किम गिचे का सामना करेंगे।
1: और अगर बैडमिंटन की बात करें तो पीवी सिंधु ने आज महिला सिंगल्स के दूसरे राउंड में चीनी ताइपे की चिउ पिंचियन को 21-19, 21-14 से हराकर एशियन गेम्स 2026 के राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है।
0: एशियन गेम्स में दो बार मेडल जीत चुकी सिंधु ने पहले गेम में पिछड़ने के बावजूद पिंचियन को आसानी से हरा दिया। उधर भारत की पदक उम्मीद लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के दूसरे राउंड में सिंगापुर के लोह किन यू से हारकर बाहर हो गए।
1: तो श्रोताओं, चलते चलते आपको यह भी बता दें कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच कल तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। यह मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 30 सितंबर को गुवाहाटी में और अंतिम मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा।
0: उधर एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम 28 सितंबर को अपना पहला मुकाबला अफगानिस्तान से खेलेगी। और श्रोता, हम आपको यह भी बता दें कि भारत एशियन गेम्स में 4 स्वर्ण, 12 रजत, 14 कांस्य के साथ टोटल 30 पदक हुए हैं और भारत 10वें स्थान पर है सिद्धार्थ।
1: और श्रोताओं, अब समय समाप्त हो रहा है, इसी के साथ सिद्धार्थ सिंह और प्रशांत को दीजिए अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी।

0: समाचार दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
2: इसी SIR को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों ने जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
3: NCCF द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
1: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृहमंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
3: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना, और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का, सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
4: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
5: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
4: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
6: PM नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहां से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
4: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान

0: केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
3: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थ यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
4: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक, 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
5: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में

0: बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल 27 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्क्वाश में जोशना चिनप्पा और वेलावन संथिल कुमार की मिक्स डबल्स जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Election Commission reiterates that order for SIR issued for all states and UTs with its unanimous approval. Says booth level officers will visit homes of electors issued notice during SIR to collect required documents. Union Minister Amit Shah inaugurates several NCCF initiatives in Kerala to boost women's empowerment through cooperatives. Chief Justice of India Surya Kant says drug abuse among children must be seen as child protection issue. External Affairs Minister S. Jaishankar to address United Nations General Assembly in New York tonight. And in Asian Games, Indian men's and women's kabaddi teams clinch gold medals in Japan. Tajinder Pal Singh Tur wins silver in men's shot put. India's medal tally reaches 30 with 4 gold, 12 silver and 14 bronze. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision, SIR, of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said, a meeting of the Commission was held today where Chief Election Commissioner Ganesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on the 24th of June last year for all the states and UTs, starting with Bihar, was issued with the unanimous approval of the Commission.
4: A meeting of the Election Commission of India was held today. The Chief Election Commissioner, Shri Gyanesh Kumar, and Election Commissioners, Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi, were present in today's Commission meeting. The Commission unanimously took a number of decisions in today's meeting, which are being shared through today's ECI press note.
3: The Election Commission today said booth-level officers, BLOs, will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing special intensive revision to collect the required documents. The BLOs will subsequently upload the documents on the ECI.